0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फुड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि।

0: गीता ज्ञान,
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रायोजन गर्न अथवा यहाँको सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन

0: 41289820 मोबाइल नंबर 98142898209 में संपर्क कर सकूने श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन श्रृंखला कार्यक्रम अमृत धारा प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 5:30 देखि 6 बजेसम्म र साँझ 8 बजेदेखि 8:30 सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योतिमा।
1: यस कार्यक्रमका प्रायोजक श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड।

0: तुम लोगों की हर बात छूटी है। वो आदमी भी तुम लोगों के होंगे। ला मेरा पर्स।
1: ये क्या हुआ? ना धन्यवाद ना थैंक यू, ये क्या हुई है?
2: लीजिए लीजिए।
1: उस्ताद वो तो चली गई।
2: बरखुरदार बुजुर्ग कह गए कि बोलने और चुप रहने पर कंट्रोल हो सकता है लेकिन सुनने पर नहीं।
1: क्या मतलब?
2: मतलब ये कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो वो बोलेगे कि तुम बोलते नहीं हो।
1: तुम्हारा मतलब? बोलो।
2: चल चल

0: एड्रेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनी सूट,
4: वाओ,
5: अनि मलाई

0: Flashback.
1: खुदा करे आज के बाद सूरज कभी ना निकले।
2: वो क्यों?
1: सिर्फ रातों को दीदार की इजाजत देकर आपने सचमुच सजा दी है मुझे। हर दिन कयामत का दिन होगा, आपसे दूर रहकर जीना मुहाल है मेरे लिए। देख लीजिएगा, आपसे जुदा होकर अगर दिन निकलते रहे तो किसी दिन दम भी निकल जाएगा मेरा।
2: ऐसी बेपनाह मोहब्बत इस दुनिया में मुमकिन है क्या?
1: मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत रहे तो मुमकिन नहीं। मेरी मोहब्बत तो एक इबादत है, मेरे जीने का मकसद है। मेरी हर सांस आपके दम से है, दिल की हर धड़कन में आप बसी हुई हैं।
2: बस करो खुदा रब, बस करो। मेरे होश आवास मत छीनो मुझसे। जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे ही ख्यालों में गुम हूं। ख्वाबों में भी तुम, तसव्वुर में भी तुम। ये कैसा जादू कर दिया है तुमने मुझ पर? आखिर तुम कौन हो हसीन अजनबी?
1: अजनबी हूं जरूर, लेकिन आपका दीवाना हूं मैं।
3: लैला, हमने फैसला किया है कि आज से तुम्हें इतने सख्त पहरे में रखा जाए कि जिंदगी भर तुम्हें कैस के दीदार ना हो सके।
2: जिंदगी भर तो खुदा के भी दीदार नहीं होते अब्बा जान, फिर भी खुदा के मतवाले मरते दम तक उसकी लगन में डूबे रहते हैं।
3: तुमने कैस को खुदा का दर्जा दे रखा है?
2: खुदा का दर्जा तो नहीं दिया, अक्सर खुदा का नूर देखा है कैस के चेहरे में, तब जी चाहता है सजदे में अपना सर झुका दो।
3: इंसान को सजदा करना गुनाह है, मजहब इसकी इजाजत नहीं देता।
2: मोहब्बत मेरा मजहब है अब्बा जान, और सजदा मोहब्बत की इबादत है, सजदा मोहब्बत की परस्तिश है।

0: अपने हाथों से सवारा है तुम्हें कुदरत ने, देखकर देखते रह जाने को जी चाहता है। नूर ही नूर छलकता है हंसी चेहरे से, बस यही सजदे में गिर जाने को जी चाहता है। मेरे दामन को कोई और ना छू पाएगा, तुमको छू कर ये कसम खाने को जी चाहता है।
1: नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी, मुझे बख्श दिया आपने जिंदगानी।
0: हाय अल्लाह, आप जाग रहे थे?
1: और अब तो नसीब भी जाग उठे।
0: मुझे आने में देर तो नहीं हुई?
1: बिल्कुल नहीं, आप तो जाने कब से आई हुई है।
0: जाने कब से?
1: ख्वाबों में, ख्यालों में, वो चांद निकलने के बहुत पहले से मेरा चांद मुझ पर बिजलियां गिरा रहा है।
0: चांद बिजलियां गिराए, ये कैसे मुमकिन है?
1: चांद चेहरा है तेरा और नजर है बिजली, एक एक जलवे पे मर जाने को जी चाहता है।

0: चांद की हस्ती ही क्या सामने जब सूरज हो। आपके कदमों में मिटाने को जी चाहता है।
1: नहीं जाने मन, नहीं मेरे जीते जी तुम मिट सकोगे भला? अब तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी दुनिया हो, मेरी जन्नत हो। जाने वो कैसी रूहानी कशिश थी जो मुझे तुम तक खींच लाई।
0: वही कशिश मैंने भी महसूस की। ऐसा लगता है सदियों से अपनी रूहों का मेल है, अजनबी होके भी तुम पर आए नहीं लगते।
1: ये करिश्मा है कुदरत का या इंतहा है मोहब्बत की? मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता, फिर भी दिल की हर धड़कन कहती है कि मैं तुम्हें बरसों से जानता हूं। तुम्हारा नाम क्या है?
0: लैला।

0: लैला, मेरी जाने तो मन्ना, मेरी जाने जा।
1: मेरे मालिक, मेरे महबूब।
0: लैला, लैला, अपने महबूब का नाम नहीं पूछोगी?
1: पूछने की जरूरत नहीं, दुनिया में सिर्फ एक ही मर्द है जो मुझे इस तरह सीने से लगा सकता है, और वो कैस के सिवा और कोई नहीं हो सकता।
0: लैला, या खुदा, वक्त की रफ्तार थम कर रह जाए, ताकयामत लैला यूं ही मेरे सीने से लगी रहे, मौत भी आए तो कैस का दम लैला के कदमों में निकले।
1: अल्लाह करे तुमसे पहले मेरा दम निकल जाए। मेरे मालिक, अब मेरा दम तुम्हारे दम से है। तुमको बचपन में खोके बड़ी मुश्किल से पाया है। या खुदा, तकदीर अब वो सितम ना ढाए, अब हम कभी जुदा ना हो खुदा।
2: अब अगर हमसे

0: अगर तूने इस निकाह से इनकार कर दिया लैला, तो याद रखना मरते वक्त ये मां तुझे दूध नहीं बख्शेगी, तुझे दोजख की आग में जलना पड़ेगा।
1: दोजख और जन्नत का फैसला तो मरने के बाद होगा अम्मी जान। जीते जी तुम मुझे दोजख की आग में ना झोंकिए, मैं कैस के अलावा किसी और की बनी तो जिंदगी दोजख हो जाएगी।
0: खामोश गुस्ताख लड़की, जिस जालिम ने मेरे बेटे को जवान मौत मार डाला, जिसके हाथ तेरे भाई के खून से रंगे हैं, उन्हीं हाथों को तू जिंदगी भर के लिए थामना चाहती है।
2: शहजादा बख्त इब्ने आदम, आपका निकाह लैला बिन्त कासिम सरवरी के साथ बिलएवज 1,00,000 दीनार मेहरे मुअज्जल करार पाया है, आपको कबूल है?
3: कबूल।
2: लैला बिन्त कासिम सरवरी, तुम्हारा निकाह शहजादा बख्त इब्ने आदम के साथ बिलएवज 1,00,000 दीनार मेहरे मुअज्जल करार पाया है, निकाह कबूल है?
0: हाँ कह दो बेटी, हाँ कह दो।
2: निकाह कबूल है?
0: तुझे अल्लाह के वास्ते इनकार न कर, इनकार का अंजाम सोच ले क्या होगा।
2: निकाह कबूल है?
0: हाँ कर ललक, हाँ कर।
4: तुझे कैद की कसम है बेटी, हाँ करते हैं।
0: अगर तूने हाँ न की तो अल्लाह करे मुंह देखे मरे हुए कैस का।

मेरी पोती को अच्छा कर दो, कईयों की मुरादें पूरी की हैं तुमने, हमारी भी झोली भर दो पीर बाबा।

संग मरमर से तराशा हुआ ये शोक बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। सुर्ख होंठों में थिरकती है वो रंगीन शराब जिसको पी पी के बहक जाने को जी चाहता है।

नर्म सीने में धड़कते हैं वो नाजुक तूफान, जिनकी लहरों में उतर जाने को जी चाहता है। तुमसे क्या रिश्ता है, कब से है ये मालूम नहीं, लेकिन इस हुस्न पे मर जाने को जी चाहता है।

हमसे बेहतर है ये पाजेब जो इस पाँव में है। इसी पाजेब में ढल जाने को जी चाहता है।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नुहुने छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
5: सम्पर्क नम्बर 5320411 9802076888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।
6: Four eight.

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरी।

0: बन के
1: मेरे दिल में तू बस जा,
0: मेरे कुर्ते में लग जा,
1: मेरे दिल में तू बस जा।

0: बैंक एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यहाँ को विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर, सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह, देशै भरि रहेका शाखाहरूबाट निशुल्क एबीबीएस कारोबार सुविधा, सी आसबा सुविधा, कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा, निशुल्क चेक बुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार, गुर्जुको चौक, काठमाडौँ।
1: टुगेदर वी डेलिभर।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग
2: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
3: मलाई फ्रॉक
4: मलाई पनी सूट
5: अनि मलाई

0: ಪಾವೆಲ್ ಚುಚ್ಚೆಪಾಟಿ.
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने.

युग युग माया को बैरी सधन संसार तिमि मेरो मा तिम्रो मुना मदन जस्तो युग युग माया को बैरी सधन संसार तिमि मेरो मा तिम्रो

0: एड्रेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: बोली क्या तो फिल्म हेर्दा खेरि बोली मानौ न
1: मिति गङ्गुदी मङ्सी

0: ओल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भरि।
1: हे हे,
2: हाय हाय,
1: बाफ रे बाफ,
2: वाव वाव,
1: जाऊ न जाऊ,
2: आऊ त आऊ, श्रेष्ठ टेलरिंग,
1: या बेबी या।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM AJ 104.8 MHz.

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि। सम्पर्क नम्बर 53204118 0020 76888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: राधाकृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधाकृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भरि।
1: यहाँहरू अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.5।

सद्गुरु प्रवचन श्रृंखला अन्तर्गत एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ द आर्ट अफ लिभिङ को संयोजनमा श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन माला कार्यक्रम अमृत धारा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक श्री इन्वेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड।

0: नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ यहाँलाई द आर्ट अफ लिभिङ को संयोजनमा संचालित यो कार्यक्रम अमृत धारामा। अब हामी द आर्ट अफ लिभिङ का प्रणेता श्री श्री रवि शंकर ज्यू को प्रवचन श्रृंखला को क्रममा आजको प्रवचन सुन्नेछौ।
1: हर क्रोध के पीछे चाह है कुछ, जब चाह पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। तुम दुख है, क्रोध कैसे आए? निकाल इसको, कहते हैं इसी को निकाल, कहते हैं ना क्रोध है।

भीतर से गहराई में कोई ऐसी भाव होता है कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं कुछ तो वो दिखाने के लिए लोग कहते हैं मैं तो बहुत, इसको तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को कुछ सिद्ध करके दिखाना चाहते हैं। अखंड जहां भी अखंड दिखती है तुम्हें, जान लेना वहां फोर है अंदर कुछ। तो वो पोल को छिपाने के लिए अखंड दिखाना पड़ता। सहजता सरलता पूर्णता के साथ साथ चलते, जितना तुम तृप्त हो वह निर्विकारता सहज ही होता है।

ढकने के लिए हम तरह तरह का आडंबर। तरह तरह का पोशाक रचाता रहता है आदमी। जो बहुत रही है वो दिखाने नहीं चाहता है, थोड़ा कम है उसमें वो दिखाना चाहता है, मैं बहुत रही हूं। अगाध बुद्धि रक्षुद्ध बुद्धि, इतना अगाध बुद्धि तुझमें है भाई, अपने आप को बुद्धिहीन मत समझो। जैसे यहां मत सागर से जैसा तुम सोचो वैसे होने लगोगे। तुम ये सोचो कि मैं बेवकूफ हूं, मुझमें बुद्धि नहीं है, तो फिर वैसे होने लगे, फिर बेवकूफ बने रहोगे। अगाध बुद्धि रक्षुद्ध भव चिन्मात्र वासना। वासना यदि रखना ही है, वासना कुछ ना कुछ रहता ही है, तो चिन्मात्र की वासना करो, चैतन्य की तरफ मन दौड़े। मन को एक दिशा चाहिए होती है। आप कहते सब कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ अब कुछ भी नहीं है तो क्या करें? जीवन के लिए एक दिशा तो चाहिए। दरिया को बहने के लिए कोई दिशा तो चाहिए, जगह तो चाहिए, रास्ता तो चाहिए। वासना वासुदेवस्य वासितंते जगत्रे। असल में सारी वासना का एक ही लक्ष्य है, सुख मिल जाए। वो सुख हमारे चैतन्य स्वरूप में चैतन्य से ही मिलता है। इसलिए भव चिन्मात्र वासना, वो चिन्मात्र चैतन्य के प्रति तेरी वासना का, उस वासना में तुम चलो। क्या यहां बैठे तो चिन्मात्र वासना से तो बैठते हो? अष्टावक्र सुनने के लिए, ज्ञान के लिए, ध्यान करने के लिए, तो किस के कौन सी वासना दौड़ाई आपको? चैतन्य की बात, चैतन्य। क्या वो चैतन्य की शक्ति मिल रही है ना सत्संग में बैठते, तो चैतन्य की शक्ति मिल रही है वहां। इसलिए वो ये भी तो वासना ही है, मगर इस वासना को बनाए रखो। ज्ञान ध्यान समाधि

വസ്തുനിശ്ചലം ഏതതത്വോപദേശേന ന പുനർഭവതോ ഭവ. തൂ തരി വൈജ്ഞാനികോ കോ സുനോഗെ തൂ ഇനി കഹേഗെ സാകാര സച്ച് നഹീ. सच क्यों नहीं बदलता है? 10 साल पहले का तुम्हारा चेहरा आज का चेहरा नहीं, फर्क है, फर्क है कि नहीं? 25 साल पहले तो जब तुम बच्चे थे तब के चेहरे में, आपके चेहरे में, तब के शरीर में, आपके शरीर में परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन है. और आगे 10 साल में तेरा आकार भी बदलेगा. जितना भी तुम उम्र को रोकने की चेष्टा करोगे संभव नहीं होगा. पूर्णतः उसमें तुम सफल नहीं पाओगे, ताकि शरीर अपनी ढंग से चलता. सब अथाओं दुनिया में जो भी साकार संसार है ये सच नहीं. सच क्यों नहीं? तक ये बदलता रहता, बदल जाएगा. शरीर में सबसे तरल है मन, सबसे तूल है हड्डी. हड्डी भी हजारों सालों में बदलती रहती है, इसीलिए वो कार्बन डेटिंग जब करते हैं हड्डियों को प्रयोगशाला में ले जाके उसका जांच लगाते हैं, पता लगता है ये कितने साल पुराने हैं. देखिए हर साल में उसके ऊपर एक परत चढ़ जाता है, उसमें परिवर्तन. मरा हुआ हड्डी में भी परिवर्तन होता है भाई. जिंदा आदमी में तो परिवर्तन बहुत जल्दी ही होता रहता है, लाश भी बदलता रहता है. यहां सब कुछ परिवर्तनशील है. चैतन्य रूप मन भी परिवर्तनशील है, और जड़ दिखता हुआ, जड़ दिखता है नहीं, जड़ दिखता हुआ जो हड्डी गई वो भी परिवर्तनशील है. तो इस सब के सब परिवर्तनशील है. क्यों? इन सब में आकार है. मन बुद्धि चित्त को भी साकार नहीं गिना गया, मगर सिर्फ आत्मा एक निर्विकार निराकार है. सिर्फ आत्मा एक निराकार और निर्विकार. तो ये साकार सब परिवर्तनशील है, ये तुम जानो. और तुम साकार नहीं हो, तुम निराकार हो. ऐसे तत्वोपदेश, ऐसे इस तत्व का तुझ भीतर जो निराकार तत्व है, इसका उपदेश तुम्हें मिल जाए ज्ञानियों द्वारा, गुरु द्वारा, फिर तुम्हारा दोबारा जन्म

तुम चाहे तो जन्म ले सकते हो, वो अलग बात है, जबरदस्ती नहीं। नहीं, जो रास्ता भूल गए वो रास्ता खोजता हुआ निकला ये आदमी, वो भी उसी रास्ते पर चल रहा है रास्ता खोजता हुआ। और दूसरा एक तो गाइड है जो रास्ता जानता है और लोगों को लेके जा रहा है उस रास्ते, दोनों रास्ते पर चल रहे हैं। एक तो इधर उधर देख रहा है, भयभीत है, पता नहीं कि सही रास्ता है गलत रास्ता, खोजता हुआ जा, एक खोजी की चाल है, एक तो मार्गदर्शी की चाल। एक मार्गदर्शक भी चल रहा है उसी मार्ग पर, एक खोजी भी चल रहा है। खोजी के लिए मार्गदर्शक की जरूरत।